0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
3: आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

पंहिंजे हुकूमत पंहिंजो आइनी मुदो पूरो कंदी ऐं शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहंदो। अजमेर ॻाल्हि ते क़ाइम आहियां त निज़ाम बिल्कुलु तबाह थी चुको आहे। माण्हुनि जी ख़्वाहिश आहे त वज़ीर आज़म ऐं मुंहिंजा लाॻापा ख़राब थी वञनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जूं इस्लामाबाद में साफ़ियुनि सां ॻाल्हियूं। मोहसिन नक़वी चयो त वज़ीर आज़म 14 खां 16 कलाक कम करे रहियो आहे। शहबाज शरीफ खे सिस्टम ठीक करणु मिले हा त मुल्क खे 100 भेरा तेज़ीअ सां अॻिते वठी वञे हा। वज़ीर आज़म खे मशवरो ॾिनो वेंदो त सभिनी वज़ीरनि जी कारकर्दगीअ जो जाइज़ो वरितो वञे। वज़ीरनि जी कारकर्दगी जो जाइज़ो कार्टरी धुर वठे ऐं पोए रिपोर्ट अवाम अॻियां रखी वञे। पाकिस्तान ऐं ईरान सरहदी वापार खे हथी ॾियण तोड़े 24 कलाक सरहद खुलियल रखण लाइ सहूलियतूं वधाइण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। बहितर लॉजिस्टिक ऐं कस्टम्स तरीक़े में बेहमांगी आणण ते इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म सां ईरान जे वापार वारे वज़ीर सरबराही में 6 रुकनी वफ़द जी मुलाक़ात। शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान खिते में अमुन लाइ पंहिंजियूं मुख़्तसाणियूं कोशिशूं जारी रखंदो। ईरानी सदर सां ताज़ो ई खिते में अमुन जे क़याम ऐं पाक ईरान लागापन ते सुठी ॻाल्हि ॿोल थी। पाकिस्तान पंहिंजे बहितरीन पाड़ेसरी ब्रादर मुल्क ईरान सां लागापन खे क़दर जी नज़र सां ॾिसे थो। उमीद आहे त पाकिस्तान ऐं ईरान विच में $10 अरब जे ॿतरफ़े वापार जो हदफ़ हासिल कयो वेंदो। ईरानी वज़ीर सैयद मोहम्मद पाकिस्तान जी सफ़ारती कोशिशनि जी वाखाण कंदे चयो त ईरान पाकिस्तान सां इक़्तिसादी ऐं वापारी लागापन खे वधीक हथी ॾियण जो ख़्वाहिशमंद आहे।

0: ऐं सिंध हाईकोर्ट जो मलीर मागवा थियल 10 वरनि जी बालीअ खे 12 अगस्त ताईं बाज़ियाब कराइण जो हुकुम। शाहीन बीबी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त 4 साल अॻु मुड़ुस सरदार अली खां खुला वरती हुई। अॻोणे मुड़ुस ऐं संदसि माइट धीउ सौदो अगवा कयो हो। पुलिस मूंखे बाज़ियाब करायो पर न्याणी अञा ताईं न मिली आहे। अदालत SSP मलीर खे 6 ॾींहनि अंदरि बालीअ खे बाज़ियाब कराइण जो हुकुम ॾिनो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। सचल की सर मस्त धरती,
2: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
1: GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
4: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
6: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
6: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
4: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
4: 0331252578 6۔
6: جی ہاں 2315525786۔
4: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
6: سندھ جو آواز۔

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252578 6।
0: जी हा 3135525786।
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐ बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-32-41-200।
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मिंथू कयूं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका ईरान ते वॾे फ़ौजी हमले जी तयारी करे चुको हो। दबाउ सबबि ईरान ॿीहर ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते अचण लाइ तयार थी वियो आहे। मां बि फ़ौजी कार्रवाई बदिरां सिफारती हल खे तरजीह ॾींदो आहियां। मुआहिदे करणु पसंदि न कंदसि छाकाणि त माण्हुनि खे मारण नथो चाहियां। ईरान खे एटमी हथियार रखण जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। ईरान में हिकु धुर ॻाल्हियुनि ऐं ॿी जंग जारी रखण जी हामी आहे। अमेरिकी नायब सदर जी दावा जीडी वेंस चयो आहे त ॻाल्हियुनि ऐं छिकताण वारे अमल में सूरतयाल हेठि मथे थींदी रहंदी आहे। जेको बि थींदो अमेरिका आवाम जे हक़ में ई थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अॼु ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते सऊदी अरब रवानो थींदो। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म सऊदी वहद वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सां मुलाक़ात कंदो। मुलाक़ात में पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जे लाॻापन ऐं ख़िते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं थींदियूं। मौजूदा निज़ाम केॾांहुं बि न पियो वञे। हुकूमत पंहिंजो आईनी मुदो पूरो कंदी ऐं शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहंदो। अॼु बि इन ॻाल्हि ते क़ाइमु आहियां त निज़ाम बिल्कुलु तबाह थी चुको आहे। माण्हुनि जी ख़्वाहिश आहे त वज़ीर आज़म ऐं मुंहिंजा लाॻापा ख़राब थी वञनि। वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी जो इस्लामाबाद में साफ़ियुनि सां ॻाल्हियूं। मोहसिन नक़वी चयो आहे त वज़ीर आज़म 14 खां 16 कलाक कमु करे रहियो आहे। शहबाज शरीफ खे सिस्टम ठीकु मिले हा त मुल्क खे 100 भेरा तेज़ीअ सां अॻिते वठी वञे हा। वज़ीर आज़म खे मशवरो ॾिनो वेंदो त सभिनी वज़ीरनि जी कारकर्दगीअ जो जाइज़ो वरितो वञे। वज़ीरनि जी कारकर्दगी जो जाइज़ो कार्टी धुर वठे ऐं पोइ रिपोर्ट अवाम अॻियां रखी वञे। काज़ी अहमद में पुलिस ऐं फोरन विच में मुक़ाबिलो। पुलिस अहलकार शहीद ऐं हिकु फोरन मारिजी वियो। पुलिस मौजूद पुलिस ऐं फोरन विच में मुक़ाबले दौरान पुलिस अहलकार पीर मोहम्मद हुसैन खोसो शहीद थी वियो। ॾोहारी गुलाब शाह बि मारिजी वियो। दादू वेझो शाणी बिरादरी में जहिड़े दौरान क़तल थियल 3 ॼणनि जे हथियारनि जे पहिरे में तदफ़ीन। मुज़फ़र रब नवाज़ ऐं ख़ादिम शाणीअ जी तदफ़ीन कई वई। जहिड़ींदड़ धुरियुनि जा ॻोठ वेझो हुअण सबबि ॿीहर जहिड़े जो इम्कान। वाके बाद मुख्य जवाबदार सदाम शाणी ऐं ॿिया घर खाली करे फरार थी विया। पुलिस जवाबदारनि जा घर ढाहिण जो कम शुरू करे छॾियो। सिंध हाईकोर्ट जो मलीर मागवा थियल 4 वरनि जी बालीअ खे 12 अगस्त ताईं बाज़ियाब कराइण जो हुकुम। शाहीन बीबी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त 4 साल अॻु मुड़ुस सरदार अली खां ख़ुलाह वरिती हुई। अॻूणे मुड़ुस ऐं संदसि माइट धीअ सूदो अगवा कयो हो। पुलिस मूंखे बाज़ियाब करायो पर न्याणी अञा ताईं न मिली आहे। अदालत SSP मलीर खे 6 ॾींहनि अंदरि बालीअ खे बाज़ियाब कराइण जो हुकुम ॾिनो। ऐं अमेरिकी सदर जो डेमोक्रेटिक अॻवान अब्दुल सईद ते यहूदीन ऐं इसराइल सां नफ़रत जो इल्ज़ाम। परॾेही मीडिया मूजिबि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त सेनेट जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी फतेह अब्दुल सईद नफ़रत सां भरियल आहे। हू यहूदीन ऐं इसराइल सां नफ़रत कंदो आहे। मीडिया रिपोर्ट सां अमेरिका में इसराइल नवाज़ तंज़ीम डॉक्टर डेमोक्रेटिक प्राइमरी खे हाराइण लाइ 32 मिलियन डॉलर ख़र्च कया हुआ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवांजे पंहिंजे शहर माटली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे इत्माद खे कायम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
5: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
8: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
8: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
10: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 0331252576।
8: जी हा, 2315525786।
10: GFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: आनंद को।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओं रंग। आर्च क्रीम हेयर कलर, अंदाज में एतमाद।
1: दरियाए सिंध की लह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक। फकीरी नीम

को चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. You are tuning into Radio FM 88.0, और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, सिंध की आवाज। अभी ये कैसे हैं आप? आई होप कि जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM। आपका मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत से साथ जो कि आज भी जारी हो सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे तक।

0: असली की आवाज GFM 90.4
1: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252578
2: जी हा 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: वंस अगेन आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार। आपको मेरे साथ पूरे 1 बजे तक का हिजरी और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में 3 तरीकेकार से। आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, SPCG मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे। कॉमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा, दैट इज GFM88। इस नाम के पेज के ऊपर आपने आना है और आने के बाद आपको मिलेगी इस पेज के ऊपर पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488, इसके ऊपर कॉल की जा सकती है। ठीक है, तो कॉल कीजिएगा और मुझे बात कीजिएगा। और इसी के साथ साथ हम लेने जा रहे हैं शो की फर्स्ट कॉल और चेक करेंगे कि जी कॉलर कहाँ से। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: वकार लाड़काना।
0: वकार लाड़काना से कैसे, ठीक ठाक? रुखसार भाई बहुत अच्छे। मुझे ये बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: हम आपका प्रोग्राम बड़े शौक से लाड प्यार से सुनते हैं, हमारे लिए आपका प्रोग्राम बहुत अनमोल चीज है।
0: वाह क्या बात है जी, क्या बात है। इसी बात पे फिर गाना सुना दें
1: जी। गाना पाकिस्तानी हो या सिंधी हो?
0: पाकिस्तानी हो।
1: पाकिस्तानी हो तो उसका सुनाओ, इसका नफरत का, दिल से जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जुर्म बस इतना है।
0: आए हाय हाय हाय,
1: सुखार भाऊ।
0: हाँ जी,
1: गानो बुधरा
0: अभी सुनवाते हैं जी। ऐसी बात कर रही आपने तो
1: मेहरबानी।
0: बस ये रहा आपका गाना, थैंक यू सो मच। और गाना सुनते हैं, गाने के साथ साथ कॉल्स को इंटरटेन करेंगे।

0: एक और कॉलर लेते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम सागर भाई, कैसे?
1: खैरियत खैरियत ठीक ठाक, आप कैसे?
0: ठीक ठाक मुझे बताइएगा कि आप प्रोग्राम सुन रहे
1: हैं? नहीं सुन रहा हूँ, कल प्रोग्राम नहीं किया था आपने?
0: कल किया था ना मैंने, आपने नहीं सुना क्या?
1: नहीं मैम, मैंने कॉल की थी, मैंने 11:30 बजे से लेकर 12:45 मिनट तक कॉल करता रहा, कॉल चलती रही और कोई अटेंड नहीं हुई।
0: चलें कोई बात नहीं, आज हो गई। और मुझे ये बताइएगा कि गाना सुना रहे हैं आप?
1: जी ऑफकोर्स, गाने के लिए तो कॉल किए हैं।
0: जल्दी से सुना दें।
1: जल्दी जो बंद हो जाएगा?
0: नहीं नहीं, मतलब जल्दी से सुना दें, मुझसे सबर नहीं हो रहा। अच्छा फिल्मी गाना है, मैं अगर
1: जी, जी,
0: रीमिक्स में सुना दूं तो?
1: जी
0: रीमिक्स में सुना दूं तो?
1: रीमिक्स में पता नहीं कितने गाया
0: है। नहीं बहुत जबरदस्त होगा और आपको पसंद आएगा। ठीक है,
1: और रात वाला 7 बजे वाला शो और कर दिया?
0: वो तो कब का खत्म हो गया,
1: मैं हर शाम को रात को कॉल मिलाता रहता हूँ, 7 बजे वाले लगता ही नहीं है।
0: अरे तो शो होता ही नहीं है तो कैसे लगेगी कॉल? किसी बात
1: अरे मुझे
0: चलो फिर अब पता चल गया। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ये रहा गाना।

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपको मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है जी. और हमारा सेगमेंट सुर लगाओ गाना सुनाओ जिसमें हम आप लोगों की लाइव कॉल्स को इंटरटेन कर रहे हैं. नेक्स्ट कॉलर लेने जा रहे हैं, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो. ओके जी. हेलो.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से.
1: बेटी वफा अब्दुल वहीद जतोई केटी शामिल हूँ.
0: अब्दुल वहीद जतोई भाई गाना सुना दे.
1: वफा अब्दुल वहीद. वफा
0: वफा अब्दुल वहीद गाना सुना दे भाई.
1: बिल्कुल भाजी सुनाएंगे
0: जल्दी से.
1: हाँ, जामिन अली का सॉन्ग है. इश्क हो चर्चो न हो कुरंशो न हो बाजार जो को सौदो. इश्क हो चर्चो न हो रंशो न हो बाजी रुखसार को बाजार जो सौदो न हो. मेरे ये बाजी ऐसा बुधा दे जरूर बुधरे जो कुछ हमारे पास दोस्त है बाजी रुखसार. मेरा भाई दोस्त बल्कि मेरा भाई है जहीर में जते मेरा भाटे आया में जते. देखो बात वकार शेख वकार जते लारकानी से. और जो भी सुन रहा है वफा अब्दुल वहीद जते पर सजे सत के सलाम लारकानी को आसिफ चाचर तार के बुध रहा है.
0: ओके थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. और जी ये रहा आपका गाना.

0: जी एक और कॉलर लेते हैं, चेक करते हैं कौन है कहाँ से. हेलो. ओके हेलो हेलो.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से.
1: हाफिज लखमीर बात कर रहा हूँ मोरो से.
0: हाफिज लखमीर भाई गाना सुना रहे.
1: जी जी सुनाऊंगा.
0: सुना दे.
1: अच्छा.

ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, ये गाना किसका है? ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और हम गाना प्ले कर रहे हैं आपका, और गाना ये रहा, इसको हम सुनेंगे और आगे चलेंगे। तो जी ये वाला नहीं प्ले करेंगे, एक सेकंड, हम ये वाला प्ले करेंगे और इसको सुनेंगे, और इसी के साथ हम बहुत सारी लाइव कॉल्स भी लेंगे। वैसे मेरे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम जाएंगे न्यूज़ ब्रेक, फॉलोड बैक।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: टेक्नोलॉजी सेंटर का बताया था, जो कि चीन का सीड्स हब कहलाता है, जहां पर चीन के जो बीज हैं सारे वो फलों और सब्जियों के, फसलों के और अजनास के, और उसके अलावा दुनिया भर में जो बीज हैं उनको वहां स्टडी किया जाता है और फिर उनको तैयार किया जाता है चीन के लिए। तो मुख्तलिफ इलाकों की आबो हवा के मुताबिक अलग अलग इकसाम बीजों की मुतारिक कराई गई है, ताकि हर खत्ते में बेहतर नतज हासिल किए जा सकें। और फिर खास तौर पर जो जरिए जामियात हैं, यानी जो यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, फिर रिसर्च सेंटर्स हैं, और मकामी हुकूमतें जो हैं वो मिलकर एक मरबूत ताउन के साथ इस अमल को मजीद मौसर बना रहे हैं। यानी ये जिक्र हमने पहले भी किया कि चीन में जो जो जो तहकीक का जो मरकज है उसको एप्लीकेशन के थ्रू देखा जाता है, यानी उसकी एप्लीकेशन क्या है। अगर कोई तहकीक ऐसी है कि जिसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, या वो आपकी मॉडर्न इंडस्ट्री को फायदा नहीं दे सकती, उसे इतना अहम नहीं समझा जाता, बल्कि फंड्स हासिल किए जाते हैं इंडस्ट्री से ही, और फिर वो फंड्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को कि आप अपनी तहकीक करें, इतना अरसा आपके पास है, और फिर हमें रिजल्ट्स दें। तो ये अमल जो है ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक और बड़ी कामयाबी जो है वो डिजिटल जो ज़रई निज़ाम है उसका क़याम है, यानी उसको डिजिटलाइज आप कैसे कर सकते हैं, कि अब पाकिस्तान में भी ये काम कुछ सतहों पर हो रहा है। यानी किसान अब मोबाइल फोन के जरिए मौसम देख लेते हैं, मार्केट के नर्ख देख लेते हैं, बीमारियों की पेशगोइयां देख सकते हैं, और फिर ज़रई माहिरीन की मशावरत हासिल कर सकते हैं। तो कुछ हिस्सों में पाकिस्तान के अब ये सारे काम थ्रू एप्लीकेशन हो रहे हैं। इलाकों में मस्नूई जहानत जो है वो फसल की तस्वीर का तज्जिया करके भी बीमारी की निशानदेही करती है और फौरी इलाज तजवीज करती है। इसी तरह जो फैसले हैं वो अब अंदाजों के बजाय दुरुस्त आदाद शुमार की बुनियाद पर किए जाते हैं। 2025 की हम बात करें तो मौसम की बाज मुश्किलात के बावजूद चीन की जो गर्मियों की फसल की फी हेक्टर पैदावार थी वो तकरीबन 5634 किलोग्राम रही, मैं फी हेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिससे जाहिर होता है कि जदीद टेक्नोलॉजी ने जो मौसमियाती चैलेंजेस थे उसके बावजूद पैदावार को मुस्तहकम रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और हालिया वर्षों में जो स्मार्ट फार्मिंग है उसको भी बहुत फरोग मिला है, और नेशनल लेवल पर डिजिटल ज़राअत का मंसूबा भी शुरू किया गया है, जिसके तहत मस्नूई ज़हानत को, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, बिग डेटा को, सैटेलाइट नेविगेशन को, और जदीद मालूमाती निज़ाम को पूरे ज़रई शोबे में वसत दी जा रही है, ताकि जो खुराक की पैदावार में मजीद इजाफा हो और वसाइल का मौसर इस्तेमाल भी मुमकिन बनाया जा सके। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ भी ज़राअत मईशत का एक अहम सुतून है, मगर अभी तक बेशतर किसान रिवायती तरीकों पर इंहिसार करते हैं। फिर पानी की कमी है, मौसमियाती तब्दीली है, कम पैदावार है, जदीद मशीनरी की महदूद दस्तियाबी है, फिर मयारी बीजों की कमी है, और फिर ज़रई तहकीक हमारे यहाँ उस तरह से नहीं है। तो ये तमाम चीजें ज़रई तरक्की की रफ्तार को सुस्त कर रही हैं। चीन का तजर्बा पाकिस्तान के लिए कई अहम असबात रखता है। यही वजह है आपने देखा कि एक प्रोग्राम शुरू किया गया पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, जिसमें 1000 ज़रई माहिरीन को चीन भेजा गया मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी 200-250 फिर 200-250-300 ऐसे करके। और उन तमाम लोगों को जब यहाँ भेजा गया तो मकसद ये था कि वो आकर यहाँ पर चीन में जो ज़रई तहकीक है उसे देख सकें, यहाँ पर काम करने को तरीका जो तरीका है उसे देख सकें, कैसे आप स्मार्ट इरिगेशन से, ड्रोन टेक्नोलॉजी से पानी की बचत कर सकते हैं, फसलों को बेहतर कर सकते हैं, और फिर यही काम आगे बढ़कर किसानों को फिर जदीद मशीनरी, आसान इख्तियार और हुकूमती मुआवनत के साथ अगर फराहम की जाए तो वो भी ज्यादा बेहतर होगा। और फिर हमने मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो बात की वो अब किसी हद तक पाकिस्तान में शुरू हो गया। तो कई जो हमने फैक्टर्स गिनवाए थे चीन की ज़राअत में डिजिटलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के हवाले से, उसमें से अगर मैं समझूं तो शायद किसी हद तक सैटेलाइट सिस्टम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल एप्लीकेशन और मार्केट के जो नर्ख हैं उसके अलावा पाकिस्तान में हम उस तरह से काम नहीं कर रहे जो प्रोडक्शन लेवल पर होना चाहिए था, बीजों के हवाले से, मशीनों के हवाले से, ड्रोन्स के हवाले से। पाकिस्तान और चीन का जो ज़रई ताबुन है वो मुख्तलिफ सतहों पर फिलहाल जारी है। चीन की जामियात में, तहकीकी इदारों में और ज़रई कंपनी में स्थानीय इदारों के साथ तावन होता है, उसमें बीज काश्तकारी पानी के बेहतर इस्तेमाल और जल्दी तबियत के शोबों पर बात हो रही है, लेकिन इसको मजीद तेज होने के साथ साथ ये जरूरत है कि जो कुछ हासिल किया गया है यहाँ रहकर उन लोगों ने, वो वापस जाकर उसको बेहतर तौर पर डिलीवर कर सके। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोग यहाँ आ तो जाते हैं, वो यहाँ देख भी लेते हैं, लेकिन जब वो वापस अपने मुल्क जाते हैं तो उनको वो हालात में मैसर नहीं होते कि वो उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके। तो नतीजा ये होता है कि एक एक्सपोजर तो हासिल हो जाता है लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, क्लोज करें, तो एक बड़ा जरिए तरक्की के हवाले से
1: It's 12:30 PM.

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम

0: 101.4
1: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

कोशिश करूंगा सुनने की और रिकॉर्ड भी करूंगा और उसको रात 12 बजे सुनाऊंगा। बस आप अच्छे से विश करना प्लीज। चलें, डन हो गया, हम विश करते हैं जी और बहुत अच्छे तरीके से विश करेंगे आपकी वाइफ को, नहीं सॉरी, हमारी भाभी को। अच्छा, इसके अलावा गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? स्कूल भी खुल गए हैं और बारिश के बाद नेटवर्क इश्यू था तो शामिल प्रोग्राम नहीं हो सकी, रुखसार। अच्छा, ये बात है, चलें ठीक है, कोई बात नहीं है।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-32-41-230।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
7: आरजी या जिंदगी कुछ सोच कर विचार कर, आरजी या जिंदगी कुछ सोच कर विचार कर, प्यार दे ए प्यार वठ कैसा न तकरार कर। एडी आकड़ ए वडाई खाम खा आतो कई, एडी आकड़ ए वडाई खाम खा आतो कई, गुलफाम गुल सादो थी रह, हर मानु सा तू प्यार कर, हर मानु सा तू प्यार कर।

0: हम लेंगे आपसे इजाजत और लास्ट में हम प्ले करेंगे जी मैशअप मैशअप सॉन्ग सलाह अंजुम एक्स तलविंदर एफटी आतिफ असलम. तो इसको सुनेंगे और इसी को सुनते सुनते हम प्रोग्राम को कर देंगे रैपअप. और फाइनली अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी अब मंडे को ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजी. सुनना मत भूलिएगा जिंदगी गुलजार है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी. लिव सिंपल बट थिंक हाई. दिस इज मी आरजी रुखसार साइंस आउट. टेक केयर. गुड बाय. अमाने खुदा. अल्लाह हाफिज.
1: अब तो अमजद जुदाई के उस मोड़ तक दर्द की धुंध है और कुछ भी नहीं. जाने मन अब दिल लौटने के नहीं. छोड़िए अब वो किस्सा पुराना हुआ. वो जो उलझा था वैसी हवा से कभी उस दिए को मुझे तो जमाना हो.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by.
1: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: सदर ट्रंप खबरुनि जी तरदीद कंदे चयो आहे त अमेरिका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूदु आहे, कूड़ियूं ख़बरूं पकड़ींदड़नि खे जेल वञणो पइजी सघे थो। दुश्मन 48 कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण जी साज़िश कई पर नाकाम रहियो। जंग ऐं पाबंदियूं बि ईरान खे शाम वांगुर झुकाए न सघियूं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो। नई सुप्रीम लीडर भी ईरान के मुतहद ऐं मजबूत बणायो आहे। ईरान में एक दुर गालिन ऐं बी जंग जारी रखण जे हामी आहे। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जी दावा चयो आहे त गालिन ऐं छिकताण वारे अमल में सूरतहाल हेठ मथे थींदी रहंदी आहे, जेको भी थींदो अमेरिकी अवाम जे हक़ में ई थींदो। ओमान वेझो आबन हरमुज़ में ॿिन ऑयल टैंकर्स में धमाका। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी मूजिबि बहरी ॿेड़नि में धमाका ओमान वेझो थिया आहिनि। वधीक तफ़सील न आहिनि मिलिया। थर में 175 अरब टन कोयले जा ज़खीरा मौजूद आहिनि। पाकिस्तान मैदनी वसीलनि सां मालामाल आहे पर घणियूं सलाहियतूं अञा इस्तेमाल न आहिनि थियूं। मैदनियात जे शोबे जी तरक़ी लाइ सीड़पकारी टेक्नोलॉजी ऐं बहितर पॉलिसियुनि जी ज़रूरत आहे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस 2026 खे ख़िताब। वॾे वज़ीर चयो त थर जा ॿिए ब्लॉक गॾिजी लॻभॻ 2640 मेगावाट बिजली पैदा करे रहिया आहिनि। मक़ामी कोयले जे इस्तेमाल सां पाकिस्तान खे सालियानो 1.5 अरब डॉलर जी बचत थी रही आहे। पाकिस्तान में कोयले, ट्रामे, सोन ऐं नायाब मैदनियात जा वसी ज़खीरा अञा गैर फ़ाल आहिनि। आलमी तब्दीलीअ जो हिसो बणजण लाइ पाकिस्तान खे अॼु खां ई सलाहियतूं पैदा करणियूं पवंदियूं। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो जी कराची जे सिटी कोर्ट सां आमद। कराची बार जे सदर आमिर वड़ाइच ऐं ॿियनि सां मुलाक़ात कई। आईजी सिंध चयो त बार बेंच ऐं वकीलनि खे गॾिजी कम करणो आहे। ग़लति फहमियुनि खे कंट्रोल करण जी कोशिश थियण घुर्जे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ते गॾिजी कम करणो आहे। आमिर वड़ाए चयो आहे त आईजी जावेद आलम ओडो जे अचण ते शिकायतूं ख़त्म कयूं आहिनि। हाणे न FIR घुर्जे, न वधीक एक्शन कम थिए या न वकील खे थाणे में इज़त मिलणु घुर्जे। चकवेझो पुराणे तकरार तां ॿिन धुरियुनि में झेड़ो, हिक ॼणो क़तल। कोट शाहू थाणे जी हद में शींहं ऐं उमर शाकाणी जतोई जे धुरियुनि में झेड़ो थियो। धुरियुनि जी हिक ॿिए मथां फायरिंग। मोहम्मद मुसापुर रेसाक जतोई मारिजी वियो। मारिजी वियल जो लाश खानपुर इस्पताल मुंतकिल। धुरियुनि में फायरिंग जो सिलसिलो जारी आहे। काज़ी अहमद में पुलिस ऐं फोरन विच में मुक़ाबिलो। पुलिस अहलकार शहीद, हिकु फोरू बि मारिजी वियो। पुलिस मौजूदु पुलिस ऐं फोरन विच में मुक़ाबले दौरान पुलिस अहलकार पीर मोहम्मद हसन खोसो शहीद थी वियो। ॾोहारी गुलाब शाह मारिजी वियो। ॾोहारी मुख़्तलिफ़ केसनि में घुर्बल हो। वधीक जांच जारी आहे। सिंध हाईकोर्ट जो मलीर मां अगवा थियल 6 वरियुनि जी ॿारड़ीअ खे 12 अगस्त ताईं बाज़ियाब कराइण जो हुकुम। शाहीन बीबी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त 4 साल अॻु मुड़ुस सरदार अली खां ख़ुला वरिती हुई। अॻोणे मुड़ुस ऐं संदसि माइटनि धीउ सूधो अगवा कयो। अदालत SSP मलीर खे 6 ॾींहनि अंदरि ॿारड़ीअ खे बाज़ियाब कराइण जो हुकुम ॾिनो। दादू वेझो शाहणी बिरादरीअ में झेड़े दौरान क़तल थियल 3 ॼणनि जे हथियारनि जे पहिरे में तदफ़ीन। मुज़फ़र रब नवाज़ ऐं खादम शाहणीअ जे जनाज़े नमाज़ बाद तदफ़ीन कई वई। झेड़ींदड़ धुरियुनि जा ॻोठ वेझो हुअण सबबि ॿीहर झेड़े जो इम्कान। वाके बाद मुख्य जवाबदार सदाम शाहणीअ ऐं ॿिया घर खाली करे फरार थी विया। सिराणे वेझो बासर पारां चोरी इल्ज़ाम हेठि पकड़ियल 2 ॼणनि ते बदतरीन तशद्दुद ऐं तज़लील। वीडियो वायरल। सोशल मीडिया ते वीडियो वायरल थी वई। ॻोठ बगड़ा मेमण में ट्रांसफार्मर चोरी थियण जे इल्ज़ाम हेठि वली मोहम्मद मला, मोला बख़्श ऐं अली मोहम्मद महेंद्रो ते तशद्दुद करे तज़लील कई वई। वीडियो वायरल थियण बाद सियासी समाजी धुरियुनि पारां वाके जी मज़म्मत, इख़्तियारनि खां नोटिस वठण जो मुतालबो। Thank you.
1: रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301043842।
6: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03132525786।
4: जी हा 2315525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां के रेडियो लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एज ब्यूटी सोप व्हाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

तुम्हारी उम्मीद मुआजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मुआजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिए अब दंदड़ा तमाम खूबसूरत मासूमी सुने समात हूँ मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल दुआओं के समान गए चाहतों की बात चुलाजवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नहीं से जाकर जमीन से आसमान तक जिंदगी से मोर सांस दर्दों से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन बहरापुर मतली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सुना प्रोग्राम में व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हर तरह से आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखते आ रहे हैं जनाब। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि खूबसूरती हमें कैसे मिलने वाली है, तो खूबसूरती जो है ना वो इतनी अच्छी वाली आपको मिलेगी कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई जान वाह मजे आ गए। क्योंकि अक्सर तौर पर देखा जाए अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इस टाइम में यानी कि ये जो इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी चल रही है हर किसी की, तो इसमें खूबसूरत बनना जो है ना वो बहुत ज्यादा आसान काम हो चुका है। और जबकि देखा जाए तो बहुत ज्यादा आसान काम के साथ साथ एक और मसला भी आ जाता है कि आप लोगों को पता नहीं होता कि आपसे कौन से ना प्रोडक्ट का इंतखाब करना है, कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करने के बाद आप लोगों को अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि भाई हमारी खूबसूरती तो हमें मिल जाए, लेकिन वो खूबसूरती जो मिले तो वो अच्छे वाले प्रोडक्ट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जल्दी में हमें गोरा बना दे, बाद में बहुत सारी साइड इफेक्ट आपके चेहरे पर छोड़ दे। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए प्रोग्राम पेश किया जाता है जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं तो वो कैसे मुमकिन है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने सारे लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को कमेंट खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं सो लिसनर्स फॉर रीजनिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे। और यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग मौजूद है उन तमाम लोगों से जनाब उनकी हाल चाल भी पूछे जाएंगे। सो डियर लिसनर्स अंत की हालत कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करी होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक। यानी तो यहाँ पर ना ऐसा होगा कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले हैं और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ इतनी सारी बातें करने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे भी मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सभी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए। आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून, साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की संभालने का काम कर दी भैया सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की संभाल लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कसीदे के साथ। तो बहुत प्यारा सा कसीदा प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही मुखातिब आप लोगों से होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी।

0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252578 6।
1: जी हा, 2315525786।
0: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। जिंदगी

0: अपनी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने वालों, बताओ जी रिजल्ट कैसा मिला?
1: चांदी वर्गे चंद चमकने हर जमा गुड़ खाके कोई सारो पिटांदे छड़ियां दे तू हसी बच बचाके।
0: ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम बादी सिद्रा, क्या हाल है आपके? मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, आपका प्रोग्राम वीआईपी है मीरपुर खास का, उम्मीद अली लाशारी है। सलाम राशिद लाखो अदील अबड़ो खाले जुनेजो एंड यू प्ले शमन हाजिर शमन हलायू था, और ये हमारे साथ हैं सोने मानो के सलाम रियाज महर जो रियाज महर भात आज मोहब्बत प्रोग्राम बुध पड़ा। मकसूद मल्हा हमारे साथ है रायपुर से, कहते सिद्रा मुस्कान आदाब आदाब, मुझे मास्टर मंजूर का गाना तो सुनाना, तुझे हुकूमत हाजिर थींदा हूँ हर वक्त। ओके मां कोशिश कदम सभी जहाँ गाना हलाईंदी ठीक है, और चाचा खाली तुम भी अच्छा कहते हैं बेटा सिडो मैं जब तक जिंदा हूँ आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आप कुछ भी कहो। चले मैं तो बिल्कुल चाहूंगी कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, बहुत शुक्रिया जी। और कहते हैं सॉन्ग की रिक्वेस्ट बिल्कुल आपका गाना चलाएंगे। मकसूद कहते हैं सिद्रा जवाब मुझे घर, घर वाले मासा मासा मासा क्यों बोलते हैं, मुझे आज पता आज तक पता नहीं चला कि वो क्यों बोलते हैं मासा मासा। अच्छा मकसूद को मासा बना दिया। सही है भाई, कुछ और नहीं बनाया। अच्छा कहते हैं सिद्रा मुस्कान देखो आपका शो कितना अच्छा है, कभी कभी गाने की फरमाइश करता हूँ पर पारा तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा मैं कोशिश कदम तांचे गाने जी उनके हलाए वठना सी ठीक है। और कहते हैं कल मेरी चले भाभी को बोलिएगा ट्राई करती रही, आपकी कॉल भी कभी ना कभी मिल ही जाएगी। बिल्कुल से पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, कंजूसियां यहाँ भी मुड़ो ना था नहीं माना।

प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोगों की खूबसूरती को एहसास हो कि आप वाकई कुछ ऐसा इस्तेमाल करें, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट है। जैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अमीरों वाला एहसास होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम भी कुछ अच्छा इस्तेमाल करें तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश

सोनू खान लाशारी मीरपुर खास से हमारे साथ मौजूद है इकबाल लाशारी भाई, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। नजरी कहती है कि मुझ पर काफी निकनेम है भाई वालों के, अम्मी के, दोस्तों के, कौन से बताऊं जो सबसे फनी लगता हो आपको कि भाई ये सबसे फनी निकनेम है मेरा, वो बताएं। और उनका अलावा किशोर भाई कहते सलाम अदा स्मार्ट हाजिर आहे जाय बुधा कसम दे। अच्छा उम्मीद दिल कहते हैं जिद्दी और जिद्दी कैसी हैं आप, ठीक ठाक है ना, ऐसे ही खुश रहे, हंसी मुस्कुराती रहे। आपका शो खजूरों के पेड़ पर मजदूरों के साथ सुन रहे हैं और कालू आपको सलाम दे रहा है। कालू भाई को बोले ग्रे स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए ताकि कालू से गोरू हो जाए।

इस्तेमाल करेंगे जी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड जी स्किन फेस वॉश, क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे तो खूबसूरत हो जाएंगे ना, खूबसूरती भी वो वाली जो हमेशा आपके साथ मौजूद रहेगी। बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये हमारे साथ रुखसार कहती हैं कि नहीं रुखसार तो स्कूल से आने वाली है, शो सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा, अल्लाह पाक आपको हंसा मुस्कुराता रखे। मीरपुर खास से गुलाम मोहम्मद मरी मीरपुर खास से। अच्छा भाई ये थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं आप मुझे कभी कभी। चलें थैंक यू। अच्छा किशोर कहते हैं तुझे अखियुनि में ना निंड आया, मुखे फील थे पयो, तांखे सही फील थे पयो, निंड ना बस हलाए छु ये थोड़ो थोड़ो ही आ, स्लो स्लो तड़े मां सोचा पई त गाना कुछ फास्ट लायो जे तांखे महसूस न थिए, पर तवां डाडा माशाल्लाह। यो वेरी चलाक ब्रो। चाचा खालिद कहते आपका निकनेम अच्छा है, इससे जो ये टॉपिक है सर, मेरा कोई नहीं निकनेम, आई एम खालिद जुड़ें जो कभी बचपन में किसी ने रखा होगा, कोई प्यार से बुलाता होगा या फिर नहीं। अच्छा सादिया कहती है मेरा निकनेम पिंकी था। ओके पिंकी। मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक कमांडो कह के फ्रेंड्स बुलाते हैं जब मुझे तो, पर मुझे तो कमांडो की वर्दी से भी डर लगता है। यही होता है हो तंज में कोठी ना हूं। अच्छा निदड़ी कहती है मेरा एक भाई मुझे ओगी बोलता है और दूसरा भाई डी बोलता है और फ्रेंड्स में कोई निदु कोई निदी बोलता है और मेरा फेवरेट निकनेम है निदड़ी। तुम्हारा हर नेम दिया, तुम्हारा हर दिया हुआ नाम अच्छा लगता है मेरे को। अल्लाह मैं सदको बनाया मैं सदको। पोस्ट को लाइक और शेयर किया ही नहीं, कीजिए जरा।

يعني ريب هي مت کرے. आप जानते हैं मुझे सब कुछ पता होता है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन ये बात है कि मैं चाहती हूँ प्रोग्राम का माहौल जो ना वो जरा ठीक ठाक रहना चाहिए. मैं कोई प्रोग्राम में मेस नहीं चाहती. ओके जी, उन खां अलावा ये हमारे साथ है नसरुल्ला सूरों के प्रोग्राम जो चंगो मुड़स भी अची गयो. माशाल्लाह नजर न लगे. No.

बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना फरीहा परवेज की आवाज में हमने एंजॉय किया। प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जल्दी से बताइएगा, ताकि आप लोगों की खूबसूरती कहां तक पहुंची मुझे अंदाजा हो जाए। ऐसे के साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल होने चाहिए तमाम प्रोडक्ट, तो बिल्कुल आप अवेलेबल करा सकते हैं। बस जो नंबर आप लोगों को बताए जा रहे हैं उनके ऊपर राता कीजिए, ताकि आप भी ये समझ सके कि हमारे करीबी जनरल स्टोर पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, डी स्किन फेस वॉश हो, या फिर व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स हो, तमाम अवेलेबल हो जाए।

वासा के थे अदी सिडो जवाब कडें कडें मोखे टी वासा एतरा दफा मजाकन में चवंदा आए टी वासा ये क्यों कहते अच्छा किशोर भाई कहते टॉपिक बाबा सही शहजादा कहते हैं मेरे भांजे स्मार्ट चाचू कहते हैं बाकी बचपन से दोस्त और काफी रिश्तेदार केके कहते हैं ओके मिस्टर केके लेकिन सबसे फनी नाम बताना था ओके शहजादो जलबाणी भी हमारा शो सुन रहे हैं भाई को वेलकम कहा जाता

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर अमित जोहर कह रहे हैं. और उसी के साथ साथ हांजी चाचा खालिद कहते हैं सिद्रा डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं नहीं, अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन के अंदर जो डिहाइड्रेशन जमा हो जाती है ना वो खत्म हो जाएगी, आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी. बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए सोली सिंधी में. और मीर तारिक बलोच हमें सुन रहे थे, असा भी शामिल आई प्रोग्राम में. मोहब्बतूं भाजू वेलकम. अच्छा अदो अदो चाहतो चवे अदी, तू अजकल मुखे हल्के में वेठी पयो लगे थो मुखे भी निदड़ी वांगुर मुंह खराब करो पवंदो. निदड़ी मूसा कदे भी मुंह खराब ना कयो. यस वो सबनी सा कंदी पर मूसा न कंदी. बाकी हल्के में कौन वरतो आहे, तव्हां सभिनी खां भारी आहियो. यस आईली फनी कोने को सची बताया, सोचे वेठो. अच्छा नसरुल्ला भाई कहते हैं असांजो त माइट निकनेम रखियो ही कोन, एक प्यारे माण्हू मिस्टर खड़ूस रखियो हुयो. अच्छा पर तव्हां खड़ूस त न आहियो. अच्छा साजिद हुसैन सुमरो भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम अदी. ओके आप हमें मिठू देरों से सुन रहे हैं, खुश आमदी दिन वेलकम कहा जाता है आपको. ऐसे ही प्रोग्राम की पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, शामली प्रोग्राम होते जाइए और टॉपिक को फॉलो करते जाइए. और बताइए आप हमें कहां से सुन रहे हैं. उसके अलावा टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे वापसी जल्दी आप लोगों के पास. तो सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जो सबब बणियो पाकिस्तान में कॾहिं बि चूंडूं मरहलेवार न आहिनि थियूं। टर्न आउट बि ॿुधाए रहियो आहे त चूंडनि में धांधली थी आहे। ही पोस्ट डिवीज़न में चूंड मरहलेवार कराइण चाहिनि था।

ईरान ऐं ओमान आबना हरमुज में बहरी जहाज़नि जे हिकु रस्ते ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ईरानी परॾेही वज़ारत तसदीक करे छॾी। तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान ऐं अमेरिका मुआहिदे जो गॾियल पदरनामो तयार करे रहिया आहिनि। टीं धुर जी मुदाख़लत ते मामिलो ख़राब बि थी सघे थो।

ईरान खिलाफ़ जंग लाइ हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते अमेरिकी सदर ट्रम्प दिफ़ा वारे वज़ीर पैट हेगसेथ ते नाराज़। अमेरिकी अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट मूजिबि सदर डोनाल्ड ट्रम्प काबीना इजलास दौरान पैट हेगसेथ ते हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते कावट जो इज़हार कयो। सदर ट्रम्प ख़बरुनि जी तरदीद कंदे चयो आहे त अमेरिका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूदु आहे। कूड़ियूं ख़बरूं पखिड़ींदड़नि खे जेल वञणो पइजी सघे थो। दुश्मन 48 कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण जी साज़िश कई पर नाकाम रहियो। जंग ऐं पाबंदियूं बि ईरान खे शाम वांगुरु झुकाए न सघियूं। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान चयो आहे त ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो। नए सुप्रीम लीडर बि ईरान खे मुतहद ऐं मज़बूत बणायो आहे।

ईरान में हिक दुर्गालिन ऐं ॿी जंग जारी रखण जी हामी आहे। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जी दावा जे डी वेंस चयो आहे त ॻाल्हियुनि ऐं छिकताण वारे अमल में सूरतयाल हेठि मथे थींदी रहंदी आहे। जेको बि थींदो अमेरिकी अवाम जे हक़ में ई थींदो। पाकिस्तान खिते में अमुन जे क़याम लाइ दोस्त मुल्कनि सां गॾिजी कम जारी रखंदो। आपन हरमुज़ ते अॻभराई सां ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि जो रस्तो हमवार थींदो। परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन नंदराबी चयो आहे त बाबुल मंदब में बहरी जहाज़नि ते हमलनि जी मज़म्मत कयूं था। पाकिस्तान बहरी रस्तनि जे तहफ़ुज़ ऐं सलामती जी हिमायत जारी रखंदो। ग़ज़ा में अमुन फ़ौज बाबति का तजवीज़ आई त पाकिस्तान जाइज़ो वठंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जे महफ़ूज़ थाकनि ऐं सहूलतकारीअ जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे।

0: कराची जी अदालत वापारी मीर रज़ा अली जी कबर कुशाई बाबत दरख्वास्त फैसलो महफूज करे वरतो। मीर रज़ा जे पी जी दरख्वास्त अदालत में बुधनी थी। दुरिन जा दलील बुधन बाद अदालत कबर कुशाई बाबत दरख्वास्त फैसलो महफूज कयो। फैसलो अॼु ई ॿुधायो वेंदो। मक़तूल वापारी जे पीउ मीर हसन चयो त पुट ते कर्ज़ हो, सॼो मुल्क कर्ज़ी आहे, परेशान आहियूं, पुलिस कतल खे मञण लाइ बि तयार नाहे, बयान बि नथी वठे, इंसाफ़ चाहियूं था।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राबितो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबितो कंदा।
7: 03132525786।
4: जी हा 2315525786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: 15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM ETH Network, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

हाँ, सो ये तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा। नंबर जरा नोट कीजिए, जी साईं गानो भी ढाढो हलो पांजे दौर में। कोई शादी खाली न हूंदी न गाने का बिना। ओके जी, सो नंबर आहे 0332738439, 0332738439, ऐं ॿियो वरी नंबर आहे 0312502597, 0312502597। केॾो ॾिसो प्यार सां ॿुधायां थी, तव्हांखे छा करणो आहे, तव्हांखे डायल करणो आहे।

0: बिल्कुल जी, चाचा पूछ रहे हैं कि एवोकाडो कौन सी क्रीम में या फेस वॉश में मौजूद है। एवोकाडो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के अंदर मौजूद है। व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो नाइट क्रीम है, जहां राज टाइम लगाए सको था। बाकी फेस वॉश में वाइटामिन सी आए। हाँ, साबुण में भी एवोकाडो अथव व्हाइटिश जे साबुण में।
1: गुलाबी चपड़ाई चीरनी अखे की मानू के पास आए रमे बदल के गई।

ओके जी, असांखे न माण्हू माराइणा आहिनि, पर असांखे माण्हू सोणा ज़रूर करणा आहिनि. सो बिल्कुल तव्हां वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु करे सघो था. अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है सलाम भाऊ जी, हाउ आर यू? आज हम भी ज्वाइन कर चुके हैं आपका शो. क्या अच्छा किया ना, एंजॉय करते हैं जी वाइटेज ब्यूटी शो. बिल्कुल जी भाऊ, आपने बहुत अच्छा किया. आप हमारे साथ ही, हमारे प्यारे भाऊ जयपाल भाऊ, और कहते हैं पोइट्री अर्ज है. भाऊ हैरान ना हुआ कर यूं मेरे याद करने पर, हैरान ना हुआ कर यूं मेरे याद करने पर, ताल्लुक जिनसे दिल का हो वो हर पल याद आते हैं. जयपाल भाई क्या बातें, क्या बातें. सफा तुम कमाल करी छो. अच्छा, ये हमारे साथ ही ठरी मीरवा से महबूब अली शेर, रिजवान अली और इमरान अली शेर. भाऊ जो मोहब्बत हुआ इन प्रोग्राम में तुम्हारे चौदह भली करी आए. और हैं जी हमारे साथ, वालेकुम असलाम फुलजी स्टेशन लग नूरपुर खां फौजी पठान खान कोसो.

सो पठान खान को सुबह तुम्हारा सलाम दिना है डॉक्टर हसीना सुमरो की ओके जी ओके उनके अलावा अल्लाह रखियो मेमण हमारे साथ है सैफुल्ला मेमण निजाम अली मेमण और हजार खान फ्रॉम लाड़काना अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सदरा मुस्कान जी आपका शो माशाल्लाह गुड है ओके कहते अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ना हमेशा सलामत रखे आमीन मुरीद अब्बास का सॉन्ग लगाइएगा याद यकूत हो कयान से डेडिकेट आपकी टीम और सब सुनने वालों को थैंक यू ओके जी बहुत शुक्रिया आपको वेलकम कहा जाता है इस्तेमाल करे सको था वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तुम्हें खबर है तो हर तरह जो प्रोडक्ट तुम्हें लाइ मौजूद है तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम है वाइट एज ब्यूटी सोप है वाइट एज फेस वॉश है तुम्हें इस्तेमाल करे तुम्हें खूबसूरती की मिले एक नो एहसास एक नई खूबसूरती तुम भी चो वाह सही वाह हाँ असाजे हिस्सा वाला प्रोडक्ट भी मार्केट में अची गया है ओके जी मीरपुर खास से अब्दुल्ला महरी अस्सलाम वालेकुम बाजी वाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है ओके वेरी नाइस ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम प्यारी मैडम आरजे सिद्रा मुस्कान फुलजी स्टेशन लग थोड़ो यो समझ में ना आयो तो यो जो तुम गोठा सिटी आ आप हमारे साथ जी डॉक्टर हसीना साहब आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है अच्छा हैप्पी कहती है अस्सलाम वालेकुम सदो जानी मेरी प्यारी मैं भी आ गई आपकी प्यारी सी महफिल में आपको वेलकम कहते हैं वैसे आपका नाम बहुत खूबसूरत हैप्पी आपका निकनेम है लेकिन आपका नाम बहुत खूबसूरत और सजाद अली जमाली कहती है नवाबशाह से सॉन्ग प्ले करें ओके मैं कोशिश किया थी वैसे हाने तकरीबन सभी जो गाना लिस्ट में अची चुका है जो हाने जो गाने की फरमाइश कहो ना थोड़ा तुम स्टॉप लगाए

0: சதுக்கோ சதுக்கோ ஹாய் சதுக்கோ சதுக்கோ
1: சதுக்கோ சதுக்கோ சதுக்கோ சதுக்கோ சதுக்கோ சதுக்கோ
0: वाह साईं वाह सदको सदको अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ मौजूद है। अली अकबर बरोही भाई आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। मोहम्मद मीरन जकरानी भाई जेकब आबासी में सुन रहे हैं वेलकम इन खुशामदीद। अच्छा ये हमारे साथ हैं मिसेस गुलाम मोहम्मद मरी मीरपुर खास से, यानी कि आप रुखसार मरी की वालिदा हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपको वेलकम कहा जाता है आप हमारे साथ। अली अकबर बरोही भाई आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए थैंक
1: यू।
0: अच्छा ये हमारे साथ ही साद साद साद वालेकुम अस्सलाम कहते हैं कैसी है, मैं ठीक हूँ कहते हैं। अदी ताजो प्रोग्राम तो वीआईपी आ है अदा ताजो मोहब्बत वाइन प्रोग्राम तो आके पसंद अच्छे पयो
1: सदको सदको सदको तुम न जानता
0: हर सदको सदको
1: अंदाजा जानता
0: हर सदको सदको।

सही था जो हिकड़ो अगे ही नखरेली आए वरी मथा तू अन्या लाड कर कदे कदे मड़े ये निदड़ी ते भी प्यार इंदो आ अच्छा दर्दी तिल के लिए चंदा टॉपिक अम्मी निदुड़ी बोलती है और अलीजा पतलू बोलती है क्योंकि मैं बहुत पतली हूँ और सबसे प्यारा निकने मुझे स्वीटी लगता है जो तुम समझ गई हो। यस मैं समझ गई बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी स्वीटी

ओके क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो बताया करें ताकि हमें भी एहसास हो कि हमारे जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं वो वाकई प्यारे होना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ खूबसूरती हासिल करना जो होता है ना वो बहुत एक आजकल के दौर में एक नॉर्मल सा काम हो चुका है। वैसे भी देखा जाए तो मार्केट में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स में से सही प्रोडक्ट जो है ना वो चूज करना एक बहुत मुश्किल सा काम लगता है मुझे। तो अगर आप भी इस सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद होना चाहिए और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही आप इस्तेमाल करें, तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम, व्हाइटिश ब्यूटी सोप एंड व्हाइटिश फेस वॉश के बारे में बताया, तो बिल्कुल अभी बारी आ चुकी है कि आप लोगों को व्हाइटिश लवली क्रीम एंड व्हाइटिश डॉक्टर पिंपल ट्यूब के बारे में बताया जाए।

0: ओके जी, भले याद करे ना पर दुआऊं करण वारा जेके ई वरी माण्हू हूंदा आहिनि उहे ॾाढा भला माण्हू हूंदा आहिनि। सो तव्हां बि अगरि कोई माण्हू तव्हांजे ज़िंदगी में अहिड़ो आहे जेको भले तव्हांखे यादि न करे, तव्हांजे ज़िंदगी मां आउट थी वियो हुजे, पर दुआनि जे सिलसिले खे कॾहिं बि बंदि न कंदा कयो। वैसे चवंदा आहिनि दुआऊं घुरी न आहिनि वठबियूं, जिन जे माण्हुनि जे लाइ दिलि मां दुआऊं पाण निकिरंदियूं आहिनि उहे माण्हू ॾाढा अनमोल हूंदा आहिनि। सो बिल्कुलु तुंहिंजो साथ हुजे सुहिणा।
1: हाय हाय।

अच्छा लुबना हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। सुरु जाने में भी अच्छी वयस तमाम जी, बेहतरीन शो में थैंक यू सो मच लुबी, आपको वेलकम कहा जाता है। अच्छा ये हमारे साथ जो पैनल पर हैप्पी गर्ल होती है वो कहती है मेरा फनी निकनेम है किट्टू, मुझे किट्टू बुलाते हैं, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और फौजी पठान खान खोसो भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इतने सारे आपने मैसेजेस कर दिए हैं। और हमारे साथ जयपाल भाई कहते हैं भाऊ जवाब लास्ट में। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी, खुशी इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएगी फिर, हाँ हम बाकी मरीज बनेंगे। हम खुशी से इलाज करवाएंगे, ठीक है, खुशी को पारित कीजिएगा हमारे। और मकसूद मल्हा भाई आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच। मेरे पर खास अब्दुल्ला महर भाई, आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू। अच्छा ये बदीन खान, डॉक्टर शौकत अली है सिद्रा तान जो प्रोग्राम सुटवाए, सो थैंक यू।

कहोगे जयपाल भाई कहते हैं कि खुदा कबूल ना करे वो दुआ जिसमें मांगा हो किसी और ने किसे। अच्छा कहते हैं वेदर अपडेट कीजिए हमारे लाड़काना सिटी की। वेदर भाई ऐसा है कि गर्मी है, समझ नहीं आ रहा कि बारिशें पूरे मुल्क में हो गई, बस लाड़काना में ही बारिश नहीं हुई, तो ऐसा वाला सीन है कि बहुत गर्मी है। उनके अलावा कहते हैं आप भाव हमारी भी दुआ है आप हमेशा खुश आबाद और हर वक्त हैप्पी रहें। डियर भाव जी थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे भाई जान। एरम कहती है वालेकुम अस्सलाम मुझे प्यारे दिलबर दोस्त जवाब है। अच्छा तो क्या अब भी आप मोटी है? लुबड़ा लाइफ में ॾाढो ॾुखा चए थी मेरा तो कोई निकनेम ही नहीं है। आए जो तव्हांजो निकनेम लुबड़ी। ये तो मत भूले। बहुत ही खूबसूरत सा कलाम हमने यहाँ पर सुना और उसी के साथ साथ ये वाला लास्ट में रहता था। बिल्कुल जी प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अच्छा नजीर खोसो भाई में सुन रही बलोचिस्तान से थैंक यू। फरजाना जमील हमारे साथ है वालेकुम अस्सलाम फरजाना। अच्छा नसरुल्ला भाई कहते हाँ जी को फरमाइश कह उन गानो सुबह जुमे ते हलो वो बिल्कुल सुबह जुमो चंगो याद जा रहा है।

0: गिव्स पास्ता गिव्स रेसिपी जिससे डालें अपने खानों में जान।
1: इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं आपका भी खुश रहे हमेशा ठीक है और हमारे साथ रहे। ओके जी स्मार्ट गोपांग आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं।
2: It's 3 p.m. this time.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इसको डेमोटाइज ना करें ना। अगर किसी सूबे की असेंबली दो तिहाई अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करे, तब ये पॉसिबल है। सूबा सिंध की असेंबली एक बार नहीं, कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनैनिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुताबिक, तो किसी बात को डिबेट करने में कोई मुजाहिदा नहीं, लोगों को भरोसा है। आप इसको इतना डेमोटाइज ना करके लाशें गिर जाएंगे, इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई चीज।
2: सूबा ठाहिण लाइ आइन में तरीक़ो मौजूद आहे, बहस थी सघे थो, आवाम खे भरोसो आहे। मोहसिन नकवी जे बयान खे बि घणी अहमियत न ॾियणु घुर्जे, सिंध में नओं सूबो न ठहंदो। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वरी वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली केतिरा ई भेरा सूबे में नए सूबे जी 100% मुखालफत करे चुकी आहे। सिस्टम खे नाकाम चवंदड़ हिकु भेरो थर घुमी ॾिसनि। थर जो मॉडल समूरे मुल्क में इस्तेमाल थियणु घुर्जे। थर में 175 अरब कोयले जा ज़खीरा मौजूद आहिनि। मैदनी वसीलनि सां मालामाल आहियूं, घणियूं सलाहियतूं अञा इस्तेमाल नाहिनि थियूं। मैदनी वसीलनि जो इस्तेमाल जूं सलाहियतूं पैदा करणियूं पवंदियूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 ॾींहनि जे दौरे ते अॼु सऊदी अरब वेंदो। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते में जारी छिकताण ते ॻाल्हियूं थींदियूं। परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन नंदरा बि चयो आहे त वज़ीर-ए-आज़म सां गॾु नायब वज़ीर-ए-आज़म एसाक डार ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बि गॾु हूंदो। सऊदी क़यादत सां मुलाक़ातनि दौरान पाक सऊदी लाॻापन ऐं खिते जी सूरतहाल समेत सिफारती कोशिशनि जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो। नायब वज़ीर आज़म एसाक डार उर्दन खां सऊदी अरब पहुतल। ईरान ऐं ओमान आबराए हरगुज़ में बहरी जहाज़नि जे हिकु रस्ते ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ईरानी परडे॒ही वज़ारत तस्दीक करे छॾी। तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान ऐं अमेरिका मुआहिदे जो गडि॒यल पधरनामो तयार करे रहिया आहियूं। टीं धुर जी मुदाख़लत ते मामिलो ख़राब बि थी सघे थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग लाइ हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते अमेरिकी सदर ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर ते नाराज़। अमेरिकी अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट मूजिब सदर डोनाल्ड ट्रंप काबीना इजलास दौरान पेट हेग ते हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते कावड़ जो इज़हार कयो। सदर ट्रंप ख़बरुनि जी तरदीद कंदे चयो आहे त अमेरिका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूद आहे। कूड़ियूं ख़बरूं पखेड़ींदड़नि खे जेल वञणो पइजी सघे थो। दुश्मन 48 कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण जी साज़िश कई पर नाकाम रहियो। जंग ऐं पाबंदियूं बि ईरान खे शाम वांगुरु झुकाए न सघियूं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशान चयो आहे त ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो। नए सुप्रीम लीडर बि ईरान खे मुतहद ऐं मज़बूत बणायो आहे।

0: 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज जी एफ एम 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सच जाए मुझ। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली। खुशखबरी,
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842-842।
6: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125252786।
4: जी हा, 2315-2576।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बनाने की क्योंकि तो किसी बात को डिबेट करने में कोई मजा नहीं, लोगों को भरोसा है आप इसको इतना डेमोटाइज ना करके लाशें गिर जाएंगे इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई चीज।
2: सूबा ठाहिण लाइ आइन में तरीक़ो मौजूद आहे, बहस थी सघे थी, अवाम खे भरोसो आहे। मोहसिन नकवी जे बयान खे बि घणी अहमियत न ॾियण घुर्जे। सिंध में नओं सूबो न ठहंदो। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली केतिरा ई भेरा सूबे में नए सूबे जे 100% मुखालफत करे चुकी आहे। सिस्टम खे नाकाम चवंदड़ हिकु भेरो थर घुमी ॾिसन। थर जो मॉडल समूरे मुल्क में इस्तेमाल थियण घुर्जे। थर में 175 कोयले जा ज़खीरा मौजूद आहिनि। मैदनी वसीलनि सां मालामाल आहियूं, घणियूं सलाहियतूं अञा इस्तेमाल नाहे थियूं। मैदनी वसीलनि जो इस्तेमाल जूं सलाहियतूं पैदा करणियूं पवंदियूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 ॾींहनि जे दौरे ते सऊदी अरब रवानो। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते में जारी चिकताण ते ॻाल्हियूं थींदियूं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिफ अतातारण ऐं तारिक फातमी वज़ीर-ए-आज़म सां गॾु हूंदा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार पहिरीं ई सऊदी अरब पहुतलु।

ईरान ऐं ओमान आबन हरमुज में बहरी जहाज़नि जे हिकु रस्ते ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ईरानी परडे॒ही वज़ारत तसदीक करे छॾी त ईमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान ऐं अमेरिका मुआहिदे जो गडि॒यल पधरनामो तयारु करे रहिया आहिनि। टीं धुर जी मुदाख़लत ते मामिलो ख़राब बि थी सघे थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग लाइ हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते अमेरिकी सदर ट्रम्प दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेगसेथ ते नाराज़। अमेरिकी अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट मूजिब सदर डोनाल्ड ट्रम्प काबीना इजलास दौरान पेट हेगसेथ ते हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते कावड़ जो इज़हार कयो। सदर ट्रम्प ख़बरुनि जी तरदीद कंदे चयो आहे त अमेरिका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूदु आहे। कूड़ियूं ख़बरूं पखिड़ींदड़नि खे जेल वञणो पइजी सघे थो। दुश्मन 48 कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण जी साज़िश कई पर नाकाम रहियो। जंग ऐं पाबंदियूं बि ईरान खे शाम वांगुर झुकाए न सघियूं। ईरानी सदर मसूद पज़िशान चयो आहे त ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो। नए सुप्रीम लीडर बि ईरान खे मुतहद ऐं मज़बूत बणायो आहे। अमेरिका जे पहिरीं तरजीह ईरान खे एटमी हथियारनि खां रोकण आहे। तेहरान सां तकरार जे ख़ात्मे लाइ वॉशिंगटन फौजी मुआशी ऐं सफ़ारतकारी समेत सभु रस्ता इख़्तियार कंदो। अमेरिकी नायब सदर जे डी विंस चयो आहे त ईरान में हिकु धुर जंग जो ख़ात्मो ऐं ॿी जंग जारी रखणु चाहे थी। तकरार जो को न को हल निकिरी ईंदो। पाकिस्तान खिते में अमुन जे क़याम लाइ दोस्त मुल्कनि सां गॾिजी कम जारी रखंदो। आबन हरमुज ते अगभराई सां ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि जो रस्तो हमवार थींदो। परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी चयो आहे त बाबुल मंदब में बहरी जहाज़नि ते हमलनि जी मज़म्मत कयूं था। पाकिस्तान बहरी रस्तनि जे तहफ़ुज़ ऐं सलामती जी हिमायत जारी रखंदो। निज़ाम अमुन फ़ौज का तजवीज़ आई त पाकिस्तान जाइज़ो वठंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जे महफ़ूज़ थाकनि ऐं सहूलतकारीअ जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे। ओमान वेझो आबन हरमुज में ॿिन ऑयल टैंकर्स में धमाका। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी मूजिब बहरी जहाज़नि में ॿेड़नि में धमाका ओमान वेझो थिया आहिनि। वधीक तफ़सील नाहिनि मिलिया। यमन में होसिन पारां सऊदी बहरी ॿेड़नि ते हमले बाद बाबुल मंदब में बि बहरी ट्रैफिक घटिजी वई। कुझ ई जहाज़नि बाबुल मंदब मां सफ़र कयो। पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर में मीरपुर बाद मुज़फ़राबाद रिवीज़न में बि नून लीग ते धांधली करे सीटूं खसण जो इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन जी कारकर्दगीअ ते बि सवाल उथारे छॾिया। नियर बुखारी चयो आहे त मीरपुर रिवीज़न मां 4 सीटूं पीपल्स पार्टीअ खां धांधली करे खसियूं वयूं। राणा सनावला जो बयान धांधलीअ जो सबब बणियो। पाकिस्तान में कॾहिं बि चूंडूं मरहलेवार नाहिनि थियूं। टर्न आउट बि ॿुधाए रहियो आहे त चूंडनि में धांधली थी आहे। पूंछ रिवीज़न में बि चूंड मरहलेवार कराइण चाहिनि था। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो जी कराची जे सिटी कोर्ट सां आमद। कराची बार जे सदर आमिर वड़ाइच ऐं ॿियनि सां मुलाक़ात कई। आईजी सिंध चयो त बार बेंच ऐं वकीलनि खे गॾिजी कम करणो आहे। ग़लति फहमियुनि खे कंट्रोल करण जी कोशिश थियणु घुर्जे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ते गॾिजी कम करणो आहे। आमिर वड़ाइच चयो आहे त आईजी जावेद आलम ओढो जे अचण ते शिकायतूं ख़तम कयूं आहिनि। हाणे न FIR घुर्जे, न वधीक एक्शन कम थिए या न वकील खे थाणे में इज़त मिलणु घुर्जे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
6: ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे।
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
4: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई, औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3-41-200।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842।
6: खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

पाकिस्तान खिते में अमन के क्याम लाए दोस्त मुल्क सा गर्जी कम जारी रख आप नरमस्ते अग पढ़ाई से ईरान अमेरिका गालियन जो रस्तो हमवार पर डेई तर्जुमान टायरुस अंद्राबी है बाबुल मुंतब में पहरी जहाजन से हमलन की मुसम्मत कई था पाकिस्तान पहरी रस्तन के तहफुज ए सलामती की हिमायत जारी रख गजा में अमन फौज बाबत का तजवीज आई तो पाकिस्तान जायजो वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दन की महफूज थाकन ए सहूलतकारी जो खात्मो जरूरी है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे।
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली। खुशखबरी
4: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
7: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ टिन ॾींहनि जे दौरे ते सऊदी अरब रवानो। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। ॿितरफ़नि लाॻापन समेत ख़िते में जारी ठिकताण ते ॻाल्हियूं थींदियूं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिफ, तौज़ा तारण ऐं तारिक फातमी वज़ीर आज़म सां गॾु मौजूद। नायब वज़ीर आज़म साकदार पहिरीं सऊदी अरब पहुतल।
2: अरे मेरे भाई, किसी की लाशें गंदे नहीं देंगे आप, इतने जज्बाती ना हो, इसको डेमोटाइज ना करें इतना। अगर किसी सूबे की असेंबली दो तिहाई अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करे, तब ये पॉसिबल है। सूबा सिंध की असेंबली एक बार नहीं, कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनैनिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुताबिक, तो किसी बात को डिबेट करने में कोई मुजाहिदा नहीं, लोगों को भरोसा है। आप इसको इतना ड्रामेटाइज कर देंगे कि लाशें गिर जाएंगे, इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई चीज।
1: सिंध में नए सूबे वारे मामले ते के बि लाश न किरंदा ऐं नई वॾी सिंध में को सूबो ठहंदो। सिंध असेंबली केतिरा ई भेरा नवनि सूबनि ख़िलाफ़ यकराए ठहराउ पास करे चुकी आहे। अवाम खे बि भरोसो आहे, हरू भरू मामले खे वधाए पेश न कयो। सिंध जे वॾे वज़ीर बहादुर शाह जो मोहसिन नक़वी जे बयान ते रद अमल। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर चयो त पुरमन एहतजाज जो सभिनी खे हक़ आहे, पर रोड बंदि करे अवाम खे परेशान नथो करे सघिजे। सिस्टम खे नाकाम चवंदड़ हिकु भेरो थर घुमी ॾिसनि। थर जो मॉडल समूरे मुल्क में इस्तेमाल थियणु घुर्जे। थर में 175 अरब टन कोयले जा ज़खीरा मौजूद आहिनि। मादनी वसीलनि सां मालामाल आहियूं, घणियूं सलाहियतूं इहा इस्तेमाल न थियूं आहिनि।

ईरान ऐं ओमान अपना हुर्मुज़ में बहिरी जहाज़नि जे हिकु रस्ते ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ईरानी परेही वज़ारत तस्दीक करे छॾी। तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान ऐं अमरीका माहिदे जो गॾियल पतनामो तयार करे रहिया आहिनि। टीं दौर जी मुदाख़लत ते मामिलो ख़राब बि थी सघे थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग लाइ हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते अमरीकी सदर ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेक्स ते नाराज़। अमरीकी अख़बार वाशिंगटन पोस्ट मूजिब सदर डोनल्ड ट्रंप काबीना इजलास दौरान पेट हेक्स ते हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते कावड़ जो इज़हार कयो। सदर ट्रंप ख़बरनि जी तरदीद कंदे चयो आहे त अमरीका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूदु आहे। कूड़ियूं ख़बरूं पखेड़ींदड़नि खे जेल वञणो पइजी सघे थो। दुश्मन 48 कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण जी साज़िश कई पर नाकाम रहियो। जंग ऐं पाबंदियूं बि ईरान खे शाम वांगुरु चुकाए न सघियूं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो। नए सुप्रीम लीडर बि ईरान खे मुतहद ऐं मज़बूत बणायो आहे। अमरीका जी पहिरीं तरजीह ईरान खे एटमी हथियारनि खां रोकणु आहे। तेहरान सां तकरार जे ख़ात्मे लाइ वाशिंगटन फ़ौजी माशी ऐं सिफ़ारतकारी समेत सभु रस्ता अख़्तियार कंदो। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त ईरान में हिकु दौर जंग जो ख़ात्मो ऐं ॿी जंग जारी रखणु चाहे थी। तकरार जो को न को हल निकिरी ईंदो। पाकिस्तान खिते में अमन जे क़याम लाइ दोस्त मुल्कनि सां गॾिजी कम जारी रखंदो। अपना हर मुस्तक भराई सां ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो रस्तो हमवार थींदो। परडेही तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदराबी चयो आहे त बाबुल मंडब में बहिरी जहाज़नि ते हमलनि जी मज़म्मत कयूं था। पाकिस्तान बहिरी रस्तनि जे तहफ़ ऐं सलामती जी हिमायत जारी रखंदो। हज़ा में अमन फ़ौज बाबति का तजवीज़ आई त पाकिस्तान जाइज़ो वठंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जी महफ़ूज़ ताक़त ऐं सहूलतकारी जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। जी FM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो जी FM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾींहुं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहुं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
7: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है
8: सुनते रहो GFM 90.4

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
3: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अरे मेरे भाई, किसी की लाशें गिरने नहीं देंगे। आप इतने जज्बाती ना हो, इसको डेमोटाइज ना करें इतना। अगर किसी सूबे की असेंबली दो तिहाई अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करें, तब ये पॉसिबल है। सुबह सिंध की असेंबली एक बार नहीं, कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनैनिमसली, यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सुबह सिंध में बनाने की मुखालफत की। तो किसी बात को डिबेट करने में कोई मुजायका नहीं है, लोगों को भरोसा है। आप इसको इतना ड्रामेटाइज ना करें कि लाशें गिर जाएंगी। इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई चीज।
2: सिंध में नए सूबे वारे मामले ते के विलास न किरंदा आए नई वरी सिंध में को सूबो ठहंदो। सिंध असेंबली केतरा ही भेरा नवन सूबन खिलाफ यकराए ठहराव पास कर चुकी है। आवाम के भी भरोसा है, हरू भरू मामले के बताए पेश न कयो। सिंध के वडे वजीर मुआद अली शाह जो मोहसिन नकवी के बयान ते रद्द अमल। कराची में गालाईंदे वडे वजीर चयो ता पुरअमन एहतजाज जो सभी के हक है, पर रोड बंद करे अवाम के परेशान न थो कर सकते। सिस्टम के नाकाम चवंदड़ एक भेरो थर घुमी दिसन। थर जो मॉडल समूरे मुल्क में इस्तेमाल थियण घुर्जे। थर में 175 अरब टन कोयले जा ज़खीरा मौजूद आन। मादनी वसीलन के हवाले से घणियूं सलाहियतूं अञा इस्तेमाल न थियूं आहिनि। फील्ड मार्शल श्री उदासी मुनीर से सोमालिया के बचाव वाले वजीर की क्यादत में आला सतही वफ की मुलाकात। GHQ रावलपिंडी में मुलाकात दौरान गड़ियल दिलचस्पी के मामलन, इलाकई सिक्योरिटी सूरतहाल, बितरफी दिफाई ए सिक्योरिटी सहकार के वधिक हथी डेण के मामलन ते कारण की डेवट। ISPR मूजिब धुरियन गड़ियल सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुंह डेण लाए अस्करी राबता वधिक मजबूत बनाने की अहमियत ते जोर भरियो। सोमालिया के बचाव वाले वजीर अमन ए इस्तेकाम के हथी डेण लाए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत ए हथियारबंद फौज के पेशावराने किरदार के सहारायो। फील्ड मार्शल खत्े में जटादार अमन के क्याम लाए हर मुमकिन सहकार जो अजम वरजायो।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ टिन ॾींहनि जे दौरे ते सऊदी अरब रवानो। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। बितरफ़नि लाॻापनि समेत ख़िते में जारी छिकताण ते ॻाल्हियूं थींदियूं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ख़्वाजा आसिफ अताउल्ला तारड़ ऐं तारिक फातमी वज़ीर-ए-आज़म सां गॾु मौजूद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार पहिरीं सऊदी अरब पहुतल।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
7: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: It's 8:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: अमर सिंध जे सिंध में एक चमकंदड़ सितारो
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
7: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुश खबरी छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजन त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
8: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
9: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
10: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
9: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
10: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
9: सुनते रहो GFM 90.4।

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजरसानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मत ही तो काबू में नहीं आती, छाओं में धूप की तरह, जिस्म में रूह की तरह, गुजरे दिमाग से याद तेरी लगातार लहू की तरह, अब खाए जाए ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह, तेरे बिना नहीं घर भी घर, अकेले महसूस ये किया, तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला, खिजा भी आई बर वक्त और दिल का बाग भी रहा ना हरा, तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना, तू मुझ पे देखे इंसान बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला, तू है

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ टिन ॾींहनि जे दौरे ते सऊदी अरब पहुची वियो। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। ॿितरफ़नि लाॻापनि समेत ख़िते में जारी चिकटाण ते ॻाल्हियूं थींदियूं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ख़्वाजा आसिफ फ़तातारड़ ऐं तारिक़ फातिमी बि वज़ीर-ए-आज़म सां गॾु पहुता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ अॻे सऊदी पहुतल।
1: मेरे भाई किसी की लाशें गिरने नहीं देंगे, आप इतने जज्बाती ना हो, इसको ड्रामेटाइज ना करें इतना। अगर किसी सूबे की असेंबली दो तिहाई अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करे, तब ये पॉसिबल है। सूबा सिंध की असेंबली एक बार नहीं, कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनैनिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुखालफत की। तो किसी बात को डिबेट करने में कोई मुजायका नहीं है, लोगों को भरोसा है। आप इसको इतना ड्रामेटाइज न करें कि लाशें गिर जाएंगी, और ये इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई चीज।
0: सिंध में नए सूबे वारे मामले ते के पी लाश न किरंदा ऐं नई वरी सिंध में को सूबो ठहंदो। सिंध असेंबली केतिरा ई भेरा नवनि सूबनि ख़िलाफ़ यकराए ठहराउ पास करे चुकी आहे। अवाम खे बि भरोसो आहे, हरू भरू मामले खे वधाए पेश न कयो। सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो मोहसिन नक़वी जे बयान ते रद अमल। कराची में ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर चयो त पुरअमन एहतजाज जो सभिनी खे हक़ आहे, पर रोड बंदि करे अवाम खे परेशान नथो करे सघिजे। सिस्टम खे नाकाम चवंदड़ हिकु भेरो थर घुमी ॾिसन। थर जो मॉडल समूरे मुल्क में इस्तेमाल थियणु घुर्जे। थर में 175 अरब टन कोयले जा ज़खीरा मौजूद आहिनि। मादनी वसीलनि जे हवाले सां घणियूं सलाहियतूं अञा इस्तेमाल न थियूं आहिनि।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125-25786
1: जी हा 2310-3125-786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
8: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ।

0: मातली के हो तो आवाज
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
1: सुनते रहो GFM 90.4।